नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा, क्या को कढे गणा। नानक बिनवे सो किछ पाइए पुरब।

परम सत्कारयोग साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल दे समूह कीर्तनी जथियां वालों अते श्री गुलशन कुमार तीसरी जवालियां वालों खालसे दे 300 साल साजना दिवस नूं समर्पित अज ए आत्मरस कीर्तन दरबार किया जा रहा है। इस कीर्तन दरबार दे विच पहली वारी इतने सारे गुरु के कीर्तनी इकट्ठे इको स्टेज ते बह के प्रेम भावना श्रद्धा दे नाल गुरु जस आप संगतां नूं सरवण करा रहे हैं। सब तो पहला कीर्तन की सेवा कर रहे हैं साडे सिख कौम के महान कीर्तनीए इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल के चेयरमैन भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले, इन्हां दे नाल वाजे ते सेवा कर रहे हैं इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल के उप चेयरमैन भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले नाल बैठे हैं, उप प्रधान संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले और उन्हां दे नाल बैठे हैं भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी कौंसल दे खजांची, उन्हां दे नाल बैठे हैं भाई गुरचरण सिंह जी रसिया लुधियाने वाले जनरल सकत्तर कौंसल दे। ए पहली वारी है जो ए कौंसल दे सारे कीर्तनी जथे निष्काम भावना दे नाल गुरु की संगतां दी सेवा कर रहे हैं। इन्हां गुरु के कीर्तनिया दी भेटा केवल वध-वध संगतां नूं गुरु दे नाल जोड़ना है। इस भावना नूं मुख रख के ए सारे जथे सेवा कर रहे हैं। आओ सब तो पहला भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वालियां पासों आपा नाम दी महिमा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, पवित्र शब्द गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना आड़ दाम को छिपरो होयो लाखीना।

नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, नाम दी महिमा भगत नामदेव शिंबा जिसने भगती कीती, राजे महाराजे अमीर गरीब सारा संसार आके नमस्कारा करन लगा, ये किदा सदका है नाम दी बरकत है। आड़ दाम को शीपरो जिदी अद्धी कौड़ी भी कोई कीमत नहीं सी, कोई आदर दे के कोल नहीं सी बैठन देंदा, जपया नाम मन करके ते जदों जपया ता फिर राजे महाराजे आके नमस्कारा करन लगे, ये नाम दी महिमा है। कबीर भगत ने नाम जपया, गुणा दा खजाना बन गए, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर, किदे सदके नाम दे सदके। गुरु अर्जन देव पाछा बख्शिश कर रहे हैं के बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, एडी प्रीति पै गई के एक भी श्वास बिना जपन दे हुन व्यर्थ नहीं हो सकता। आख्या कम कार क्यों छड बैठे हो, तो कबीर जी कहने जब लग तागा बाहों बेही तब लग विसरे राम सनेही, जदों तागा खड़ी दा टुट जांदा है ते फिर उसनू नलकी विच पाके मूह दे नाल खिचना पैंदा है, ता ओ श्वास मेरा बिना जपन दे चला जांदा है, व्यर्थ हो जांदा है, ते मेरा जपन तो बिना श्वास मेरी मौत है, आखां जीवां विसरे मर जा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू नाम दी प्रेरणा दित्ती के नाम किथे पहुंचा दिंदा है मनुख नू, रविदास टवंता टोर नीत, भगत रविदास मरे होए टोर टोन वाला, ते जदों नाम सिमरन विच जुड़ गया मन ते फिर की होया, भगवान दे दर्शन होए। जो बचन कर दिया न ओ बचन कदे व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर आप आके रसना ते बैठ के बख्शिशा करन लगे। रविदास तवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग, साध संगत विच प्रगट हो गया भगत रविदास, भगत भगत जग वज्या, वज गया कि रविदास वड्डा भगत है, श्रोमणी भगत है। उच्चारण करो श्री, इसलिए प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया, भगत सैन जी ने जदों सिमरन कीता, भगतां दी महिमा सुनी आपने के भगत रविदास वड्डा भगत है, कबीर जी दी जय जयकार हो रही है, नामदेव दी जय जयकार हो रही है, तां सैन जी दे मन विच भी एक ख्याल आया जे मैं भी जपां ता मेरा भी संसार ते आउना सफल हो सकदा है, ते जदों जुड़ गए सिमरन दे विच, चैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया हिरदे वस्या पार ब्रह्म, जदों नाम रूपी पार ब्रह्म हिरदे विच वस गया फिर भगतां दी कतार विच जा खड़ोते, भगतां में गणिया। हुण इन्हां जातियां दा नाम जदों तन्ना जट जी ने सरवण कीता ना, भई जय जयकार हो रही है भगतां दी, ते नामदेव दे मन विच भी प्रेरणा आई, क्योंकि कीर्तन सतसंग इसे लई सरवण करीदा कि तिना देख मन चाओ उठंदा, एक दूसरे दा गुरसिखां दा प्यार वेख के साडा भी जी करदा, असी भी संगतां दे जोड़े चाड़िए, असी भी लंगर दी सेवा करिए, असी भी बैठिए गुरु दे चरणां विच जुड़ के नित नेम करिए, बाणी सानू की सुमत दे रही है, क्योंकि सारे जपां तपां तों पुन्नां तों सब तों

0: नाम विच कितनी बरकत है। भगत कबीर जी नू कोई पुछन लग्या कि महाराज ओ प्रभु दा सिमरन किवें करिए, उस मालक दा सिमरन किस तरह करिए, तां कबीर जी कहंदे न राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जे जपने तां त्रूप वर्गी दृढ़ता होवे, प्रहलाद वर्गी दृढ़ता होवे। प्रहलाद ने भी अपने पिता हरनाकश नू कह दिता सी, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो अवर परन सो नहीं काम। जा जो करना ही कर ले, मैं राम नाम जपना नहीं छड़ सकदा। मां ने समझाया प्रहलाद नू, भाई तू इको एक मेरी अख दा चानन है, मैं किवें जीवांगी तेरे तो बिना, तेरा पिता तैनू मरवाना चाहता है। छड़ राम नाम जपना, हो जाने इसे दा ही नाम जपी जा। तां प्रहलाद जी कहन लगे, मां मैं ओ पुत्र नहीं बनना चाहता जेड़े पुत्र अपनी कुल नू गाल पवा देंदे हां, अपनी कुल नू दाग लवा देंदे। गुरु की बाणी विच लिखिया, पुत्र प्रहलाद स्यों कहा माए, परविरत ना पढ़ो रही समझाए, निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल। प्रहलाद कह रहा है और निर्भो दाता मेरे हृदय विच वस रहा है, भला मैनू कौन मारन वाला जवे। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, जो हर छोड़ो तो कुल लागे गाल। जेड़ा मनुख अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम नहीं करदा, महाराज कहंदे ने उसनू सौ उलांबे तां दरगाह विचों दिने मिलदे हन, ते हजारां उलांबे रात नू मिलदे हन। भई अमृत वेला भी तू सौ के बिता दिता, सौ उलांबे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। तैनू हंस बनाया सी तू, फिर डड्डा कीड़िया वाल तेरा ख्याल है, डड्डा कीड़िया रूपी धंधिया विच ही हर वेले रुझिया है। तो प्रहलाद जी कहन लगे, मां ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। इसलिए मैं राम नाम जपना नहीं छड़ सकता। भगत कबीर जी भी दस रहे हैं, मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़, एक राम ना छाडो गुरे गार। मैं जे अपना नित नेम त्याग देवा, अपना धर्म त्याग देवा, मेरे गुरु नू गाल लग जाएगी। ते जेड़ा मनुख गुरु वल उंगली करा रहा है, वह कदों बख्शिया जाएगा। भाई धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने भी छाडे ते यही उपकार किया, भाई गुरु वाले बनो, यही बख्शिश कीती। कोई जात पात ऊंच नीच दा पेव पादन भाव नहीं रखिया। बाई धार दे पहाड़ी राजिया ने सुनिया भेजिया सी, महाराज असी अमृत छकन नू तैयार हां, पर साडे वास्ते अमृत दा बाटा वखरा तैयार कीता जावे। असी इना नीच जातियां नाल बह के अमृत नहीं छक सकदे, क्योंकि इक्के बाटे विच अमृत दी दात देनी पैंदी है, अमृत पीना पैंदा। महाराज कहन लगे, कदी नहीं हो सकता, कि जगत दे जितने जीव हन अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार हन, ते सारे भरा भरा हन। कोई ऊंच नीच जात पात नू मैं अंदर नहीं वड़न देना। ते 300 साल खालसे दा साजना दिवस आ रहा है, हजूर ने बख्शिश कीती सी अमृत दी दात साडे मुख विच पा के सानू गुरु वाले बनाया। एक वेरा प्यार नाल आखो, धन गुरु गोबिंद सिंह,
1: धन गुरु गोबिंद सिंह,
0: जिन्हां ने बख्शिश करके रहमतां करके अपना सब कुछ गुरु वालियां दी झोली विच पा दिता। मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है, सब ही इन ही को। जेड़ा सपुत्र हुंदा है ना, पिता उसनू खजाने दियां चाबियां ही फड़ा देंदा है, भाई हुण मैनू आराम कर लैण दे, हुण तू कम चला। तो 300 साल ते साजना दिवस ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਈ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਗੋਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਰਸ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਛੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਹੇ ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਜੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ।

नमो सिर प्रभति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचारदे ने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री

एक दे द्वय सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की चोट का झले लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बाण गंगा तरंग तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती।

खंड खड़ग अस्त्रपान खंड खड़ग तुप तवर अर्पे अस्त्रपान खंड खड़ग तुप तवर अर्पे सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दन तीरम।

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तलकाल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए।

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसीं सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पदार्थ, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया, लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार फूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चलाओ सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
2: एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
0: चार वर्ण एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज देश खालसे को तुर्क

देख खालसे को तुर्क जाएंगे भाई, देख खालसे को तुर्क जाएंगे झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत बाजे, सवा लाख जब झुके पलीता, सवा लाख जब झुके पलीता, तबे खालसा उदे

शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो न डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाओ मन बोले राज दिखाओ कौ और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल चाहो।

खिलौना, अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी, अस खिलौना। मेरा तो नाम गोविंद सिंह।

को दान न लागत नी को आन को दान न लागत नी को आज भले इनी हो दियो आज भले इनी हो दियो जग में जस और दियो सभी को जग में जस और दियो।

महल के प्रसाद ए महल के प्रसाद सुधान करे आज आज टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे इन्हीं की कृपा फुन ताम परे इन्हीं के प्रसाद को दिया इन्हीं के प्रसाद को दिया इन्हीं की कृपा सब शत्रु में

गुरमुख जन्म सवार दरगे भरिया सच्ची दरगा जाए सच्चा दिल मिलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा दिल मिलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा दिल मिलिया जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका सदे उठी जा गुरमुख सदे जान आवन कल्या गुरमुख सदे जान।

0: जे जे तुमरे ध्यान को।
1: गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंद साफ फरमाते
0: जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप मुक्त मुक्त करे संसार।
0: नानक दिस जन को सदा नमस्कार। नानक दिस जन को सदा नमस्कार।
1: नित जपिए सांस।

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी प्रवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी प्रवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

नांदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठियां ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने। की गल, गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रही ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां प्रक्रमा कीतियां, पांच पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया। अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच, जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल वचन करने होण, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े। मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत दा भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकने वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सर्वत का भला करना है, दूजियां का धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे

0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखदा है। पर एक गल है, ओदा न्याओ सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

शेर शाह सूरी नू कहे कि एक ओ भी समा आवेगा कि पहला बाबर दा कब्जा हिंदुस्तान ते होवेगा। ओ बाबर नू हिंदुस्तान

वो समा आ गया। बाबर काबुल तो अपने जालम सिपाहियां दी फौज लेके हिंदुस्तान वाल तुर पे, जिन्हें सिर झुकिया ओनू खत्म कर दिता, जिन्हें सिर नवाया वो बच गया। बाबर ने एमनाबाद तू दूर 2 मील दी विथ ते हवाना पिंड अपना डेरा ला ले। एमनाबाद विच एमनाबाद देवासियां ने किले दे दरवाजे बंद कर ले। काजी मुल्ला कहन लगे, तुसी फिकर ना करो, असियां अपनियां कलमा पढ़ के ओ बाबर जड़ी नवी चीज तुपक बंदूक लेके आया है ओनू असी ठंडियां कर देंगे। कईयां ने कहा कि बाबर नू सिर झुकाओ, पर जड़े आकड़ वाले सा

आदमी चली नाल तुर पे। मीर खान ने अपना कोड़ा मर्दाने नु फड़ाया, गुरु साहिबां नु पा

किसी दी बांह वड्डी, किसी दा सिर पट्ट है, कोई रो रहा है, कोई कुरला रहा है। जिस तरह एक फोटोग्राफर फोटो खिंचदा है, उस वेले दी हालत देख के ओ नक्शा गुरु साहिबां ने अपने शब्द विच यूं खिंचिया, क्या मर्दानिया घोड़ा छड्ड ते रबाब वजा। मर्दाने ने घोड़ा छड्ड दिता, आसा राग विच गुरु साहिबां ने

मंडप महला कहां सुबंग सराय। ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया

इस माया दे करके सारी लड़ाई हुई, पर हैरानगी की गल ए कि ए माया पापा तो बगैर कठी नहीं होंदी ते मरगियां दे नाल नाल भी नहीं जांदी। जदू आदमी मर जावे ते माया ओदे नाल

हिंदवाणी, तुरकाणी, पटियारण ते ठकुराणी। किसे दा सिर पाट गया, किसे दियां बाहां वड्डियां गईयां, कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया, भाव कि सिपाहियां ने किसे दा विलाज नहीं।

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाने विच, किथे जाके रोईए क्यों के सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख दसी।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते ले जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लेके वापस आ जांदा है। इस तरह ऐ इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन दा दिन जदों मुक जाएगा

तू हमेशा इथे रहना है ता घर बार बनाई जा। पिंड कहंदे ने इस शरीर नू, इस शरीर विचू आत्मा निकल गई ते शरीर खत्म हो जाएगा।

वो क्यों मर गए? ओनू नहीं सी मरना चाहिदा। जेड़ा मर गया है ना ओनू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने ओने तो मरना ही सी। जिनू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू कौन रोवेगा।

दिलासा दिता, उन्हां ने रोना पिटना बंद कीता है। धन गुरु नानक साहब उन्हां लोकां नूं दिलासा दे के वापस मुड़े तां पता लगा बाबर ने हाली कोरे कैदी नहीं छड़े। धन गुरु नानक साहब फिर बाबर दे कैंप वाल तुर पए ने। बाबर दे कैंप तों थोड़ी दूर जाके बैठ गए। साध संगत कैसा है गुरु, और रब नाल बहुत प्यार करदा है, पर इन्हां दुखी लोकां बारे सोच के आप दुखी हो गया। भावे ये लोग पापी सन, इन्हां नूं सजा मिलनी चाहीदी सी, पर उस गुरु नानक दा मन दुखी हो गया। उन्हां दुखी लोकां दा दुख देखिया, ते जिहड़े रब दे नाल गुरु नानक प्यार करदा है अज उस नूं इक ताना भी मार दिता। कादे वास्ते? साडे लोकां वास्ते, कि ये लोग दुखी ना होण। पर असी लोग किन्ने अकिरत कण हां कि फिर भी उहदा नाम नहीं जपदे। उस अकाल पुरख नूं कहिड़ा ताना मारिया? धन गुरु नानक साहब ने। आसा राग विच ये शब्द गुरु साहब जी बयान कर

तेनू थोड़ा जिहा भी इन्हां लोकां ते तरस ना आया, इन्हां लोकां नू गलियां दे विच धरोया, गल वढ दित्ते, बाहां वढ दित्तियां, सिर पाड़ दित्ते, गलां विच रस्से पाए, पर तेनू इन्हां लोकां ते थोड़ा जिन्ना

पर फिर ताना मारिया फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता अकाल पुरख तू सारिया दा है, पर एक गल है जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू, जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा। पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी, बाबर दे कोल बंदूकां सन ते एमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। ए कोई

कभी मैं बहुत वड्डा वा, मेरे वर्गा कोई बहादुर नहीं, मेरे वर्गा कोई अमीर नहीं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने अकाल पुरख खसमी नदरी कीड़ा आवे, ओ इंसान तेरी निगाह विच एक कीड़ा है के कीड़ियां दी तरह ओ दाने पिया चुगदा है। कई जन्म लैके कई बारी मर के इंसान जिहड़ा है फिर भी तेरे अंत नूं नहीं पा सकिया। खसमी नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच एक दात मांग रहे थे। हे वाहेगुरु, मेरे ते कृपा कर, मैनू नाम दी दात बख्श, क्योंकि नाम तो बिना होर जितने भी जीव दे कम हन, कर्म हन, ये त्रिग हन, ये किसे कम नहीं। क्योंकि नाम तो बिना जो पहनदा है, खाउंदा है, त्रिगकार है। सौ वेरा किसे नू लानत देइए, एक वेरा त्रिगकार कह देइए तो बराबर होंदी। आख्या बिना नाम तो, बिना सिमरन तो पदार्थ जेड़ा खा रहा है, जो कूकर जूठन में पाए, जिस तरह जूठा जो लोग सुट देंदे हन तां कूकर खांदे हन, आख्या ओ मनुख भी उसे तरह ही खा रहा है, झूठ खा रहा है, जे ओदे रसना ते सिमरन नहीं आया, अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम नहीं जपया। इसलिए नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, मिल मेरे गोब

शरीर दे नाल चोज कर दें जो मृतक मिथ्या शीला ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनु कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तू सुखा वल भजद चाहे कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकती है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तामी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारां नूं ही चेते करके तू जप लैंद, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम कुरबादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी, आख्या तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो नाउ, एथे दुख घनेरिया अगे ठोर ना थाउ, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन माधानिया त्यो मथे धर्म राय, एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा, इसलिए हर का नाम जिन मन ना अरादा।

0: मत को परम भूले संसार निगुरे का है नाओ बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी ने ये एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहे सी, जा रहे सी। इन्हां दा नाम उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार की यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते साध संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे, ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हन, बेकार हन, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहे। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुरु मुकत ना पाई ए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां इस सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड़ कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए अजीब आ, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थों ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, यह गल नहीं। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया परगासा। आओ निगरी पुरुष दा ए हाल है, ते आओ वडभागियो असी सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देव, नाम दी बख्शिश करदा रवे सदा, सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।